0: Es folgt eine Übernahme der BBC News auf Englisch.
1: BBC News with Emily Thomas. Iran says it has attacked US military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait, as well as radar systems in Oman, as it seeks to assert its control over the Strait of Hormuz. The Iranian barrage followed extensive American strikes on Iran overnight. Barbara Pletusher is in Jerusalem.
2: What we've seen over the past couple of days is that the Iranians have been expanding their targets. They had until recently been focusing mostly on Kuwait and Bahrain, but now we've had, I think this is maybe the third time they have fired at Jordan, something they really haven't done very much at all during the war and after. So they're really wanting to send the message that this is a very serious issue, and they're digging in with their version of how they should be in charge of the strait.
1: Thai police are investigating possible negligence after at least 27 people died when a fire tore through a Bangkok bar. Dozens were injured, several critically. Officials said the fire may have started at the front stage section of the pub and spread rapidly. Jonathan Head is at the scene.
3: Firefighters were on the scene within minutes. It took them just 30 to extinguish the fire. Inside, they discovered many of the victims in a bathroom, where they'd sought shelter after being unable to reach the exits.
4: This morning you get very little sense of the terrible scenes that were witnessed here last night, apart from the acrid smell of burning and the furniture and burnt musical instruments piled up outside. The authorities, of course, are promising a thorough investigation. The people in Thailand will say, we've had these incidents before, we've heard such promises before and seen little action.
1: Russia's security service says it's foiled two large-scale Ukrainian drone attacks on remote military air bases, one in the Urals and the other in the Far East, by the Chinese border. The FSB says Ukrainian intelligence officers used balloons and drones to deliver containers full of sophisticated strike drones, along with mobile ground control stations, into Russia. President Zelensky is in Paris to meet Ukraine's allies, who've pledged to provide security support once the war is over. The gathering of what's known as the Coalition of the Willing comes after Donald Trump promised to allow Ukraine to manufacture American Patriot air defence missiles as he demonstrates a more favourable stance towards the country. Here's James Waterhouse.
5: What has proved elusive for the so-called Coalition of the Willing is the securing of a concrete US military commitment that it would step in case their forces aren't able to enforce a ceasefire and found themselves in direct confrontation with Russian troops. What will also be discussed in the French capital is the continued targeting of Russia's shadow fleet of vessels. These long-term commitments from Ukraine's allies are sizable but will remain hypothetical until a ceasefire is finally agreed.
1: BBC News. Japan's government says it recognises the need for better counterintelligence after the New York Times reported Russia was using the country as a key base for its spies because of weak espionage laws. A spokesman said greater rigour was needed to stop foreign intelligence activities. Spies are also alleged to be using Japan as a source of dual-use weapons components. Emergency response teams are working to rescue people stranded in areas worst affected by the most powerful storm to hit mainland China this year. Typhoon Bavi brought heavy rain and violent winds to the east coast when it made landfall on Sunday, including in the cities of Yuchang and Yuching. French officials say a large wildfire, which started on Sunday to the south of Paris, is still spreading as France suffers its third heatwave this year. They described the blaze in the sprawling Fontainebleau forest as virulent and of exceptional scale. It's already burned through 8 square kilometres, causing disruption to transport. The actor, producer and director Sam Neill, famed for his leading role in Jurassic Park, has died at the age of 78. The news came in a statement by his family, who described his death as sudden and unexpected. He had leading roles in numerous films, including The Piano. Here's Colin Patterson.
6: You can see the standing that he has held in, that the Australian Prime Minister straight out there with a tribute writing, Sam Neill starred in so many beloved Australian stories and he earned a special place in Australian hearts. Wry and dry, thoughtful and laconic, Sam fought illness with the same dignity, humour and conviction that gave strength to his every performance. I think if we look at 1 year, it kind of sums up. Sam Neill, because in 1993, he starred as Dr. Alan Grant in Jurassic Park, this enormous blockbuster.
1: World News from the BBC. Hallo.
7: Ciao.
8: Grüß euch.
9: Hello.
8: Bin ich madam?
7: Mein Name ist...
9: My name is...
7: Mi chiamo Radio Fabrik.
10: Wir alle sind...
9: Die Radio Fabrik. Freies Radio für Salzburg.
1: Jetzt auf Urdu.
11: Hello, hello, hello. Assalamu alaikum. Namaste, sat sri akal und grüß Gott, Salzburg. Main hoon Imra Alam aur aap log sun rahe hain Pakinda Express. Hum log aaj aa gaye hain wapas ek aur naye show ke saath aur aaj tareekh hai 19 अगस्त और कुछ दिन पहले 14 अगस्त और 15 अगस्त गुजरी थी तो मैंने सोचा कि आज पिछली दफ़ा जब हमारा शो हुआ था तो मैंने आप लोगों को उस बारे में विश कर दिया था लेकिन जो भी सेलिब्रेट कर रहे थे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. ये मैं हिंदी में नहीं बोल सकती बिकॉज मेरे से स्वतंत्र दिवस बोला नहीं जाता है एज़ यू कैन सी बट यौम आज़ादी मुबारक ये बोल सकती हूँ मैं अपनी ज़ुबान में. लेकिन आई होप कि जो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे थे उनका अच्छा टाइम गुजरा होगा. हम लोग बाहर में रहते हैं तो अभी कुछ इस तरह से ना पाकिस्तान के बारे में जो फीलिंग्स है ना वो अपनी जगह पर है लेकिन ऐसे ना उम्मीदी सी हो गई है कि कभी भी हालात तो बदलने वाले नहीं है यार. ये क्या बकवास है, लगे हैं तो लगे रहें, ठीक है कह रहे हैं इंडिपेंडेंस डे है तो ठीक है मान लेते हैं, कुछ उस तरह की फीलिंग हो गई हुई है अभी पाकिस्तान के बारे में. ना उम्मीदी है एक्चुअली. तो आई जस्ट होप कि इंडिया में हालात कुछ बेहतर हों. मैं इंडिया के हालात बेहतर तरीके से आपको नहीं बता सकती लेकिन जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जिन लोगों को 24/7 वहाँ की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, वो इस बारे में बेहतर जवाब दे सकते हैं. बट आई रियली होप, विश एंड प्रे कि जो भी है, जहाँ भी है, इस क्रूअल्टी भरे दौर में आपको अपने अपने हिस्से का थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिल सके. एंड आई रियली होप कि हम एज अ कॉम ना सिर्फ ये कि हम मुल्कों में बटकर एक बारे में सोचें, हम लोग इंसानियत के बारे में पहले सोचें और हम लोग इंसानों के बारे में पहले सोचें एंड उसके बाद हम अपने मुल्की मुफाद को तरजीह दें. बिकॉज आई गेट इट कि सब ये पिछले दिनों जंग वाला सीन चला था एंड एवरीथिंग, बट सबसे पहले आपके इंसानियत आती है और सबसे पहले वो होता है कि आप लोगों को बम्बार्ड नहीं कर सकते. ये चीज़ कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकती है. लोगों का कत्लेआम जो है वो कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता है. ये एक सीरियस टॉपिक है बट आई रियली विश एंड होप एंड प्रे दैट हम इंसानियत के साथ आगे एक दूसरे के हाथ में हाथ लेके आगे बढ़ सकें. इसीलिए जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं उनको अंदाज़ा है कि किस तरह बंदा यहाँ पर एक साथ रहता है. यू डोंट इवन नो कि कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है बिकॉज सब एक जैसे मिलजुल के रहते हैं. जब तक आप किसी से पूछोगे नहीं आपको पता नहीं चलता. तो और मैं तो ये पूछती भी नहीं हूँ, मुझे मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो अगर मुझे कोई पंजाबी बोलने वाला मिल जाता है या उर्दू बोलने वाला मिल जाता है तो मतलब दैट मेक्स माई डे. और तो आई जस्ट होप कि आप जहाँ भी हैं सब खुश रहें और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे मुल्क जो हैं वो आगे से आगे बेहतर लाइक सैनिटी विल प्रिवेल और आगे से आगे सब खुशहाल रहने की तरफ बढ़ेंगे. और इसी नोट के साथ मैं सोच रही थी दैट मेरे टाइम्स में से पहले की बात है लेकिन हारून एंड फ़ाखिर हैज़ ऑलवेज़ बीन माई फेवरेट. और मैं उनका गाना चलाने के बारे में सोच रही थी तो आप लोग सुनिए और इन्जॉय कीजिए. आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आएगा.

So, हम लोग आ गए हैं वापस और आप लोग सुन रहे थे है जवां ए जवां. मैं जब छोटी थी तो मुझे गाना समझ नहीं आया करता था और आई ऑलवेज यूज टू से रश कब कर क्या होता है, मतलब ये क्या तरीका है मतलब. और उस टाइम पे वो भी नहीं था ना कि लिरिक्स पढ़ लो एंड ऑल दैट. तो अभी मैं सुनती हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है कि मैं उस टाइम पर समझती थी कि रश कब कोई वर्ड होता है. इट्स लाइक रश अब करेगा सारा जहाँ. तो मतलब एवरीबडी वुड envy of you, like you, everybody would like to be like you, kind of चीज़ है. बट मुझे हमेशा शुरू से ये वाला गाना जो है वो बहुत पसंद था और मुझे लगता था कि यार that's like okay, that's what happened जब आप काम से सीधा रेडियो रिकॉर्ड करने आ जाते हैं. एकदम ब्लैंक हो गई थी मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया. अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे इंडिपेंडेंस डे की और आई होप कि आप सब लोगों ने अच्छे से इंजॉय किया होगा और सारा कुछ अच्छे से गुजरा होगा. अब लेट्स कम बैक टू द सिचुएशन गोइंग ऑन. लाइक पाकिस्तान में इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा फ्लड वगैरह चल रहा है और हालात कुछ बहुत ही ख़राब हैं. और मतलब इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी वेरी सैड टू सी एवरीबडी गोइंग थ्रू वो जो मतलब खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से हालात हैं एंड ऑल दैट. मतलब दैट्स वाई आई वाज सेइंग के उम्मीद ख़त्म हो गई है. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि हम लोग इस टॉपिक पे बात जो है वो पहले बात करें और उसके बाद बस ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हमें इसके बारे में जो है वो बात नहीं करनी पड़ेगी. तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि अभी मैं चलाती हूँ विशाल शेखर का गाना कोई मज़े का जो उनका इंडिपेंडेंस के बारे में है और उसके बाद फिर आप लोग बस हम ये टॉपिक जो है ये बस ख़त्म कर देंगे. तो इसके बारे में बिकॉज़ जितनी बात करते हैं मुझे उतनी मायूसी होती है बिकॉज़ व्हाट्स इंडिपेंडेंस दे विदाउट इमरान खान भाई. तो या सो अभी हम लोग प्ले करते हैं गाना और आप लोग सुनिए और इंजॉय कीजिए और उसके बाद हम इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक जो है उसको बंद करेंगे. तो यह इस विशाल शेखर का गाना फॉर यू. हियर वी गो.

So, आप लोग आ गए हैं वापस और हम लोग सुन रहे थे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स बिकॉज पिछले दिनों 14th और 15th अगस्त को इंडिपेंडेंस डे था पाकिस्तान और इंडिया का. अभी हम नॉर्मल शो आगे कर सकते हैं बिकॉज मैं बहुत मायूसी भरी बातें कर रही थी. नॉर्मल शो की डिटेल्स ये हैं कि मेरे पास आई नो सम ऑफ द पाकिस्तानी पीपल्स और इंडियन पीपल और मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि भाई आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है. एंड आई एम लाइक ऑलवेज दिस एक्साइटेड बंदी जो मैं लोगों से फेवरेट सॉन्ग्स पूछती हूँ और फिर मुझे और मुझे होता है कि फिर मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें जो हैं वो शेयर कर सकूंगी एंड ऑल दैट. सो लास्ट टाइम आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड ही वाज लाइक बिग सिद्धू मूसे वाला फैन. एंड आई रियलाइज कि मैंने पिछले 2-3 सालों से सिद्धू मूसे वाले के जब से मतलब डेथ से पहले आई थिंक व्हेन ही बिकेम वेरी फेमस तो मैं उस टाइम पर सिद्धू के गाने चलाया करती थी और उसके बाद मैंने चलाना छोड़ दिया था. और मतलब मेरी उसके बाद मैंने चलाना छोड़ दिया था मतलब ये क्या बोल रही हूँ मैं. तो इसलिए मैंने सोचा कि इफ़ ही वांट्स तो मैं सिद्धू मूसे वाले के गाने चला सकती हूँ. और मुझे ये आइडिया हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि मैं क्योंकि ना पता है मैं इतने सालों से ये रेडियो शो कर रही हूँ तो मुझे ना अब अपनी लिस्ट ही बोरिंग लगने लगी है. मुझे लगता है कि वही गाने हैं जो मैं 24 घंटे बैठ कर चलाती रहती हूँ और इसलिए वी नीड टू चेंज द थिंग्स और स्पाइस अप द थिंग्स अ बिट. इसी तरह आपको पता है कि जब मैं पाकिस्तान में जाती होती हूँ तो मैं वहाँ से भी पूछ कर आती होती हूँ सब लोगों से कि भाई कौन सा गाना चलाऊँ, क्या करूँ एंड ऑल दैट. सो द सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू दिस गाय. जिन्होंने डेडिकेट किया उनको पता, जिन्होंने ये फरमाइश किया उनको पता है कि वो कौन है. एंड हियर वी गो विद द सॉन्ग दैट इज 295. मैंने सुना नहीं हुआ, साथ मिलकर सुनते हैं और उसके बाद इसको वापस आके रिव्यू करेंगे. ठीक है, सो हियर वी गो विद द सॉन्ग 295. या With the kid.

ये उतनी आसान नहीं होती है जितनी लगती है. मतलब जब जब फेम आता है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और जब फेम आता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं. मतलब जितने लोग, जैसे कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोगों की आंखें आपके ऊपर होती हैं उतनी लोगों की आपके बारे में राय होती है. तो कभी कभार जितने लोग आपको देख सकते हैं, आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, आपकी जितनी रीच है उतनी ही नेगेटिविटी आपकी तरफ कभी कभार क्या होती, मतलब इट्स अ ट्रुथ, उतनी ही नेगेटिविटी आप लोगों की तरफ वापस आती है. तो मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में जो बेसिक रूल है ज़िंदगी गुजारने का, वो सिर्फ ये है कि जो चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं आपको, चाहे वो दो ही क्यों ना हो, उन पर फोकस करें, और जो 98% नेगेटिविटी इधर उधर यहाँ वहाँ से कहीं आती है उसको निगलेक्ट करें. एंड द एंड ऑफ द डे जो वक्त गुजर जाता है वो हमेशा अच्छा होता है. तो जब आपका टाइम, जब वो वक्त जो मुश्किल का वक्त है जब वो गुजर जाएगा, तो आपको सिर्फ वो 2% टाइम याद रहेंगे जो अच्छे होंगे. और मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से टाइम्स रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों को मुश्किलात रहीं एज अ फैमिली और बहन भाइयों के साथ बैठकर. अब हम उन्हीं बारों में, मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में जो है वो बैठकर हम शुगल कर रहे होते हैं. वी मेक फन ऑफ दोज टाइम्स और वी मेक फन ऑफ दोज सिचुएशंस सम टाइम. इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो गुजर जाता है वो वक्त अच्छा होता है. सो सिद्धू मूसेवाले का भी वही वाला सीन है कि ही हैड अ स्पैन जहाँ पर ही वॉज वेरी फेमस एंड एवरीबडी वॉज आइडलाइजिंग हिम. बट वही ना कि वो चीज़ें जो है, जब आप इतना ज़्यादा सच बोलते हो तो ये वो दुनिया है जहाँ पर सच बोलने वाले को पसंद नहीं किया जाता. तो इट इज़ सैड व्हाट हैपेंड विद हिम, बट क्या कर सकते हैं, है ना. सो हम सब अपनी अपनी ऊपर से लिखवा कर लाए हैं, बल्कि अपने हाथों से लिख कर लाए हैं. तो इसी नोट के साथ एक और गाने की फरमाइश हुई थी, दैट इज़ अगैन सिद्धू मूसेवाले का, और दैट इज़ अबिट रोमांटिक है, चंगी है. तो लेट्स सी ये कैसा गाना है, और उसके बाद हम आएंगे और हम और ज़्यादा बातें करते रहेंगे, तो हमारा काम है. या सो हियर वी गो.

सो हेलो हेलो हेलो, आप लोग आ गए हैं वापस. और सीधे मुंह से वाले के गाने बस मैं इतने ही सुन सकती हूँ, नो ऑफेंस, बट बहुत हो गई मेरे ख्याल से. तो इसी नोट के साथ अब हम लोग आगे थोड़ा सा अपना जो शो है उसका सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. फरमाइशी प्रोग्राम भी हो गया, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल भी हो गया. अब हम बातें करते हैं जिनके लिए जो बातें करने के लिए मैं आती हूँ हमेशा की तरह. तो पिछली दफ़ा हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान की. मैं आपसे कह रही थी कि हम किसी ना किसी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं, और मैं उन टॉपिक्स के बारे में जो है वो सोच रही थी कि मतलब वो क्या टॉपिक्स हो सकते हैं. सो मैं बिकॉज़ मैं लाहौर से हूँ, तो लाहौर में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर जिनके बारे में बात की जा सकती है. बट मैं पिछले दिनों सुन रही थी इसी तरह से, इसी प्रोग्राम के लिए थोड़ी सी तैयारी करते हुए, और मैं बहुत बड़ी मुस्तंसर हुसैन तारड़ फ़ैन हूँ. और मैं बचपन में जब छोटी थी तो उस टाइम पर हम लोग जब सुबह स्कूल के लिए तैयार हुआ करते थे, तो उस टाइम पर तारड़ साहब जो हैं वो उनकी स्कूल पे लगा होता था सारा कुछ, और मैं वो सुन रही होती थी. मतलब स्कूल जाने से पहले उनका वो एक सुबह का शो चल रहा होता था, और एक वो रूटीन वाली चीज़ थी दैट अगर हम लेट हो जाते थे स्कूल से तो उसके बाद स्मर्फ्स लगा करते थे. तो हम लोगों की लाइफ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज जब सारी दुनिया बैठकर एसटीएन देखा करती थी या फिर वो देखा करती थी पीटीवी देखा करती थी, तो हमारे घर में उस टाइम पर केबल होती थी, केबल नहीं डिश होती थी, बिकॉज माय अब्बा वाज अ पॉलिटिशियन. माय अब्बा डाइड एंड समहाउ एक दफ़ा हमारी डिश ख़राब हो गई. उसके बाद हमने डिश सही नहीं करवाई बिकॉज हमारे घर में कुछ सही करवाने वाला नहीं था. यू नो, वो वाली चीज़ होती है जब आपके पास पैसे होते हैं बट आपके पास लोग नहीं होते हैं जो वो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सही करवा सकें. तो हमारी डिश फिर से ख़राब हो गई, दोबारा हमने सही करवाई कोई महीने के बाद, फिर से ख़राब हो गई. तो वो एक चीज़ थी कि अम्मा थॉट के यार बस छोड़ दो, बस ठीक है, हो गया ख़त्म, ठीक है, हम भी दुनिया की तरह पीटीवी देख सकते हैं. तो हमने पीटीवी देखना शुरू कर दिया. तो वो उस टाइम की वो बात है जब हम सुबह उठ के मुस्तंसर हुसैन ताड़ देखते रहते थे. मुझे एक ना वो एक वो सोलेस मिल गया था उस मॉर्निंग शो में कि चलो ठीक है डिश नहीं है लेकिन दैट इज़ फन, बिकॉज उस टाइम पर स्मर्फ्स आया करते थे सुबह को. तो बिकॉज मैं उनको बचपन से इतना ज़्यादा सुनती हूँ और आइडलाइज करती हूँ, और मैं उनके सफ़रनामे भी पढ़ती हूँ एंड एवरीथिंग, मेरे पास उनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं, तो मैं उनके मतलब उनकी जो टीवी पे जब वो आते थे वो शोज़ भी सुन रही होती हूँ. एक उनका शो, एक उनकी बुक है जो लाल हवेली के बारे में है. तो मैं पिछले दिनों जब उनका वो शो सुन रही थी तो मुझे वो क्लिप मिला जिसमें वो लाल हवेली के बारे में बातें कर रहे थे. अब लाल हवेली के बारे में उन्होंने लाल हवेली को बैकग्राउंड रखकर बहुत सी बुक्स लिखी हैं जिसके अंदर उन्होंने उस हवेली का एक बैकग्राउंड यूज़ किया है, और उसको उस तरह से यूज़ किया है कि वो उस हवेली के बैकड्रॉप पे है सारा कुछ. तो मैं वो सुन रही थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चल रहे हैं लाल हवेली के बारे में. अब लाल हवेली जो है वो एक बहुत पुराना कोठा नुमा जगह होती थी जहाँ पर जो औरतें हैं वो डांस किया करती थी एंड ऑल दैट, और एक वहाँ का आदमी होता था, मतलब कोई सिख था आई थिंक, और वो उसकी हवेली थी, लाल सिंह की हवेली थी, और वो हवेली भी लाल थी, और उसमें उसने बहुत ज़्यादा मतलब अपने रूम्स बनाए हुए थे, और उसके बाद वो एक कोठे में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद फिर शेख रशीद जो है वहाँ पर हर कमरा जो है वो किराए पर दे दिया गया, फिर शेख रशीद ने बाद में वो कोठी जो है वो ख़रीद ली. तो द कोठी इटसेल्फ हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ फेजेस. तो जो मुसंसर हुसैन तारड़ बता रहे थे वो कह रहे थे कि उन्होंने एक दफ़ा किसी प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से सुना था कि वहाँ पर एक कमरा है जो कि एक्सक्लूसिवली उस बंदे के लिए, लाल सिंह के लिए था, और वो बंदा जो है उसका वो एक तरह से शीश महल टाइप की जगह थी जहाँ पर वो अपने फेवरेट लोगों के साथ टाइम जो है वो स्पेंड किया करता था. सो लाल हवेली इज़ लोकेटेड इन पिंडी, रावलपिंडी, एंड इट्स वन ऑफ द मोन्यूमेंट्स बिकॉज वो इतनी फेमस जगह है, और वहाँ पर हर बंदे का अपना अपना एक स्टोरी है, अपना अपना किस्सा है. तो जो मुसंसर हुसैन तारड़ साहब सुना रहे थे कहानी, वो ये है कि वो जगह जो है वो हॉन्टेड है. अब वो हॉन्टेड इस तरह से है कि वो जो प्रोड्यूसर जिससे वो नरेट करते हैं ये सारी कहानी, वो ये थी कि वो नीचे बैठ कर उन्होंने जब नीचे जो है लोग जो बैठे होते हैं हवेली के पास, ओके, अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें सुनाई दे रही हैं तो इट्स बिकॉज नीचे एक क्रापल स्टूप है, आई थिंक किंडरगार्टन है या कोई हंस रहा है या जो भी है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. लेकिन
तो वो ये कहते हैं कि जी नीचे जो है हवेली के बाहर बैठकर लोग जो हैं वो जूते सिया करते थे। तो मतलब जूते मेंट करने वाले जो हैं वो नीचे बैठा करते थे और वो सिया करते थे सारा कुछ और रिपेयर किया करते थे जूते, और ऊपर जो है वो अंदर लोग रहा करते थे। तो उन्होंने वो जो प्रोड्यूसर थे डायरेक्टर थे जो भी, उन्होंने पूछा कि यार ये मैंने सुना कि ये जो लाल हवेली है ये तो हॉन्टेड है, यहाँ पर तो कोई जिन भूत है। दे सर नहीं सर बातें बनी हुई हैं। तो एक अम्मा थी वो वहाँ पर बैठ के जूते सी रही थी और उसके बारे में सब लोग कहते थे कि वो एक टाइम पर उस हवेली में रहा करती थी बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स। तो जब वो अंदर गए तो वो एक बाबा था वहाँ पर जो लुक आफ्टर कर रहा था चीज़ों को, उसने जगह खोल कर दिखाई। और जब वो अंदर गए तो वो शीश महल में पहुँचे, वो एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाज़ा है और उस दरवाजे के अंदर एक और दरवाज़ा है। तो वो एक काइंडा एक सीक्रेट रूम है लाल हवेली में, और वहाँ पर वो शीश महल था और वो उन्होंने देखा और सारा कुछ। और जब उन्होंने ऊपर से देखा तो वो बूढ़ी औरत नहीं बैठी हुई थी। तो बाद में उन्होंने पूछा कि वो जो नीचे और बूढ़ी औरत बैठी थी जिसने हमें बताया कि ऊपर एक शीश महल है और ये और वो और सारा कुछ कहानी सुनाई, वो औरत कहाँ है? तो दैट बाबा सेड के सर नीचे तो कोई औरत नहीं बैठी हुई थी और नीचे तो कुछ भी नहीं है और ये और वो और सारा कुछ। तो दिस इज़ समथिंग दैट हैपेंड विद द प्रोड्यूसर, जिन्होंने मुसनसर हुसैन ताड़र को फिर वो कहानी आगे सुनाई थी। इसी तरह मुसनसर हुसैन ताड़र खुद कहते हैं कि उनको कभी इस तरह की जो हैं वो वहाँ पर वो भी जाते रहे हैं और उनके कभी इस तरह के कोई वाकयात मतलब सुनने में नहीं आए, नहीं सुनने में तो आए हैं मतलब उनके साथ डायरेक्ट इस बारे में कभी कोई उनका कोई सामना नहीं हुआ किसी सुपरनैचुरल चीज़ के साथ। बट इस बारे में बहुत ज़्यादा लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि नहीं चीज़ें वहाँ पर हैं और ये वो। आई डोंट नो बट इट वॉज अ फनी स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द लाल हवेली। इस तरह की पाकिस्तान में बहुत सारी हवेलियाँ हैं जिनके बारे में इतनी हिस्ट्री है। लाइक मैं एक टाइम पर प्रैक्टिकम कर रही थी और पाकिस्तान में इंटर्नशिप कर रही थी मैं फाउंटेन हाउस में, और वहाँ पर दे हैड अ प्रोजेक्ट फॉर ख्वाजा सराज, और वो जो ख्वाजा सराज के घर हैं वो अंदरून लाहौर में थे। तो वो अंदरून लाहौर में जिन गलियों में उन ख्वाजा सराज के घर थे वो गलियाँ इतनी छोटी थीं कि आई वॉज वेयरिंग अ वेरी बिग फ्रॉक काइंड ऑफ थिंग, और वो मुझे ऐसे ना समेट कर चलना पड़ रहा था वरना मुझे लगता था कि मेरा जो फ्रॉक है जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है वो साइड पर दीवारों पर लगेगा और दीवारें बहुत गंदी थी। तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि मतलब इतनी तंग गलियाँ हैं वो कि उनमें से साइडों पर आपके कपड़े लगते हैं और वो इतनी गंदी जगह हैं कि वो आप थोड़ा सा टच भी करोगे तो वो सब ख़राब गंदा होने लग जाता है। इसी कहानी के साथ हम लोग मूव करेंगे फॉरवर्ड, और क्योंकि हसन रहीम इज़ अ बिग थिंग इन पाकिस्तान सम हाउ, वाई आई डोंट नो, मैंने कभी उसके गाने सुने नहीं, मेरी बहन ने सुने हैं बहुत दफ़ा और मुझे बहुत दफ़ा सजेस्ट भी किए हैं। तो क्योंकि मेरी बहन मेरे सर खा रही है और इंस्टाग्राम पे हर जगह पे मुझे हसन रहीम की शादी की फ़ोटोज़ नज़र आ रही हैं, हम गाना प्ले करने वाले हैं वन सॉन्ग बाय हसन रहीम, दैट इज़ ऐसे कैसे, ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे। तो लेट्स give it a listen and let's see के ऐसे कैसे। जी हाँ।

सो आप लोग आ गए हैं वापस और हम हसन रहीम का गाना सुन रहे थे. अब ये हसन रहीम का गाना जो है, मतलब इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऑफ बीट किस्म की चीज़ है और इतना कोई हाईली कमर्शियल सॉन्ग जैसे गाने बनते हैं उस तरह का नहीं है, और इस वजह से शायद लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है या क्या वजह, आई डोंट नो, बट मुझे बेसिक लगा बिल्कुल. और मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभार पाकिस्तान में अगर लड़के क्यूट होते हैं तो वो जैसे मर्जी गाने गाने लग जाएँ, लोग उनके पीछे पागल हो जाती है. आई डोंट नो, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू आई गेस. लेकिन हम मतलब मुझे लगता है कि मतलब अली ज़फ़र लोगों के टाइम्स पर भी यही था. बट आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग टाइम नूरी फैन भाई साहब. ओ हो. एंड उसके अंदर मज़े की चीज़ यह है कि मतलब जब मैंने नूरी सुनना स्टार्ट किया था तो मैंने बच्चों से सुनना शुरू किया था जो स्कूल में मेरे साथ थे, तो देवर लाइक singing songs of Noori and I was like hum duniya badlenge, to I was like wow that sounds interesting. Aur uske baad aista aista maine sunna shuru kiya, uske baad Coke Studios hote rahe, uske baad I was a big Ali Hamza fan once, but I've always been a die hard Ali Noor fan. Obviously jab aap is tarah se Ali Noor ko ya kisi ko pasand karte ho to it's all more about your likeness of their craft other than कि वो कैसे पर्सन है, बिकॉज पर्सनली आप उन लोगों को नहीं जानते हैं. तो उसके बाद जब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज आती रहीं अली नूर के बारे में, तो आई वाज लाइक मतलब व्हाई, लाइक अगर कोई बंदा कुछ जो भी अपनी लाइफ में करा, मेरा क्या लेना देना है भाई. मैंने फिर भी मतलब थोड़ी देर के लिए बंदे का थोड़ा सा वो ऑफ होता है और बंदा सोचता है कि यार क्यों, यू नो. उसके बाद आई वाज लाइक भाड़ में जाओ भाई, मैं तो अपने जो सुनती हूँ मैं सुनती रहूँगी, और जैसे मैं किसी को पसंद करती हूँ मैं वैसे करती रहूँगी, बिकॉज मैं उसको उसकी सॉन्ग्स की वजह से पसंद करती हूँ, उसको उसकी पर्सनैलिटी की वजह से पसंद नहीं कर रही हूँ. तो मुझे बाद में लगा कि हमें सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो वो हमारे लिए पब्लिक कर रहे हैं, जैसे जो उसका क्राफ्ट है मुझे उस पर फोकस करना चाहिए. इसीलिए मुझे जब भी कोई मेरी अब वो एज हो गई आई थिंक कि जब मैं कुछ क्यूट देखती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई तुम्हारा काम कैसा है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि तुम क्यूट हो या नहीं. मुझे लगता है क्यूट होना हेल्प तो आपको करता है, बट क्यूट होना सब कुछ नहीं होता. तो फिर हसन रहीम के बारे में भी मेरा यही ख्याल है. अभी हसन रहीम का हम गाना चलाने वाले हैं मेमोरीज, जो कि उसने बनाया है जस्टिन बीबीज के साथ. जस्टिन बीबीज पुराने टाइम्स पाँच साल पहले औरतें थीं जो जो गाने गाती थीं बाहर सड़कों पे, डफली बजाने वाली, डफली उसको क्या कहते हैं, उसको गड़वी बजाने वाली औरतें थीं. और वो एक दफ़ा डिस्कवर हो गई जस्टिन बीबर का गाना गाते हुए, बेबी बेबी गा रही थी वो, आई डोंट रिमेम्बर. तो वो अब उन्होंने हसन रहीम के साथ भी गाना गाया, तो अब क्योंकि हम हसन रहीम आज डिस्कवर कर रहे हैं तो ये गाना भी डिस्कवर कर देख लेते हैं कि कैसा है. गाने का नाम है जी मेमोरीज, और लेट्स सी हाउ इट गोज. सो हियर वी गो.

0: माँ का नाम लो गाना बड़ा ही कोई अजीब सा था मतलब गाना सही है लेकिन पिक्चराइजेशन थोड़ी अजीब थी। लेकिन वही वाली बात है जो मैं आप लोगों को हमेशा कहती होती हूँ कि बहुत ज़्यादा छोटे वो वाले गाने हो गए, मतलब इतने लंबे गाने नहीं है तो वो बहुत ही अजीब सा लगता है, बिकॉज मतलब गाना सिर्फ 2-3 मिनट का, उसके बाद क्या चलाना है, यू नो, मतलब इतने छोटे छोटे गाने हैं। बट इट वुड हैव बीन बेटर अगर गाने थोड़े से लंबे होते तो, और ताकि या खैर इसी के साथ हम लोग शो को वाइंड अप करने की तरफ चल रहे हैं। मैं अगले शो में भी कोशिश करूंगी कि हम किसी ना किसी पाकिस्तान की जगह के बारे में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करें। मुझे लगता है लाल हवेली के बारे में जो आज कहानी मैं आपको सुनाना चाह रही थी मैं उसको उस तरह नहीं सुना सकी जैसे मैं आपको सुनाना चाह रही थी, मतलब जैसा मेरा दिमाग में था। मैं इस तरह की बातें होती हैं जब एकदम आप सीधा काम से प्रकट हो जाते हो रेडियो स्टेशन में तो फिर आप कुछ भी बोलने लग जाते हो जो भी आपके दिमाग में आता है। तो अगर आप लोगों ने मेरी इन गुस्ताखियों को नज़रअंदाज करते हुए अगर फिर भी आप लोगों को आज सॉन्ग सिलेक्शन अच्छी लगी है या आज का आपको शो अच्छा लगा है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अगर आप लोग मुझे लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका बहुत आसान है, रेडियो फैब्रिक की वेबसाइट पे जाइए, प्रोग्राम्स में पाकिनी एक्सप्रेस को ढूंढिए और बिल्कुल बॉटम पे जब आप आएंगे तो वहाँ पर फीडबैक का कॉलम है। अगर आप लोग मुझे कोई भी फीडबैक भेजना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, एंड मुझे हमेशा अच्छा लगता है, क्रिटिसिजम्स इज मोर देन वेलकम। अगर आप लोगों को क्रिटिसिज्म आता है या फिर आप लोग किसी तरह से भी मुझ तक रब्ता करना चाहते हैं या आप लोग यहाँ पर आकर मेरे साथ बातें करना चाहते हैं या फिर आप लोग स्टूडियो में आके कि अपनी किसी कोई वाकया सुनाना चाहते हैं या अपनी किसी यू नो जगह के बारे में बताना चाहते हैं, व्हाई नॉट, आप लोग हमेशा वेलकम हैं। कोई भी फीडबैक हो आप लोग मुझे लिखिए और उसके बाद हम लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। इसी के साथ साथ जो मुल्क वाओ जो वक्त है वो ख़त्म होता जा रहा है। पिछली दफ़ा हमने सैयारा के बहुत ज़्यादा गाने चलाए थे, उसके बाद मैं बहुत ही तंग आ गई थी, मैंने मूवीज़ आज सच कोई देखी नहीं है। बट आजकल मैं अंधेरा सीरीज़ देख रही हूँ बिकॉज मेरे पास, मैं बहुत ज़्यादा आजकल क्रोशिया कर रही हूँ बिकॉज मेरी जॉब जो है वो ख़त्म हो रही है और मैं दूसरी जॉब स्टार्ट कर रही हूँ और मैं सब लोगों को कुछ अपने हाथ से बनाया हुआ देना चाहती थी तो मैं बहुत ज़्यादा क्रोशिया कर रही हूँ आजकल बिकॉज मैं या मुझे की चीन्स बनाने हैं। सो इस वजह से मैं कुछ भी टीवी पे जो भी लगा होता है मैं देखती लगा छोड़ती हूँ और उसके साथ साथ मैं अपना क्रोशिया करने लग जाती हूँ। तो उन टाइम्स के लिए मैं अंधेरा देख रही हूँ। अंधेरा आई थिंक प्राइम पर है और इफ़ यू नो प्राजक्ता कोहली मोस्टली सेन उसका सीरीज़ है। इट इज़ लाइक ड्रोना एंड काइंड कैप्टिवेटिंग बिकॉज वो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी प्लस सुपर नेचुरल थिंग्स प्लस इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दैट, उस तरह की कोई चीज़ है, मिक्सअप किस्म की चीज़ है। अगर आप लोगों को इस तरह का जॉनरा पसंद है तो आप लोगों को कैप्टिवेटिंग लगेगा मेरे ख्याल से। इसी नोट के साथ मैं जो अपना शो है हम लोग बंद करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही थी कि हम लोग को एक गाना चलाएं जो हमने बहुत अरसे से नहीं चलाया और मैं किसी अच्छे गाने पर ख़त्म करना चाह रही थी, बट फिर मुझे याद आया कि मैंने बहुत देर से अरिजीत के भी बहुत से सॉन्ग्स नहीं चलाए, तो मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा शो होगा वो हम अरिजीत स्पेशल कर लेते हैं। और अभी जो है मैंने कुछ मज़े के नोट पर गाना ख़त्म करना चाह रही थी तो मैंने सोचा कि पसूड़ी लगा लेते हैं। ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग इज पसूड़ी। जब आपको कुछ समझ ना आए कि आपने क्या, दैट्स द क्राउड प्लीजर एज वेल। आई एम सो सॉरी, गॉड, रेडियो पर बैठ के मैं खांस रही हूँ, आई एम सो सॉरी। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मुझे लगता है कि मतलब हम लोग कोक स्टूडियो का पाकिस्तान का कोई सा भी गाना लगा सकते हैं, तो अभी मैं लगाने लगी हूँ पसूड़ी और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो उसके आगे मैं कोई और भी कोक स्टूडियो का गाना चला दूँगी। आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें, जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम सॉल्सबर्ग।
1: कोक स्टूडियो सीज़न 14।